0: वापस आ गए हैं स्टूडियो दे विच ते तुसी सुन रहे हो सांझी आवाज़ रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न तुहाडी अपनी होस्ट एंड दोस्त तनु दे नाल सांझी करदे हां अज तुहाडे नाल राजस्थानी कथा सागर हरपाल सिंह पन्नू द्वारा अनुवादक कहानियां दी किताब विचों एक कहानी जिहदा नाम है कीड़ी दी करामात। एक सी चिड़ी ते एक सी कां। एक दिन दोवें चोगा चुगण वास्ते इकट्ठे उड्डे उड़दे उड़दे समुंदर किनारे अपड़े। उत्थे चिड़ी नू लब गया मोती ते कां नू लब गया लाल। चिड़ी कहिंदी मेरा मोती वध कीमती है, कां कहिंदा मेरा लाल वध महंगा है। दोवें जने जौहरी कोल परख करवाउण वास्ते चले गए। जौहरी ने पहला लाल परखिया ते फिर मोती। लाल दी कीमत दसी 1,00,000 रुपया ते मोती दी 1,25,00,000। कां दे मन विच बेईमानी आ गई, बोलिया चिड़ी भैण अपना मोती तां दिखा जरा। चिड़ी सी विचारी भोली भाली पूरी मासूम। मोती झट कां दे सामने रख दिता। कां ने कड़क चुंझ विच मोती फड़िया ते उड गया। उड़दा उड़दा पिप्पल दे दरखत उपर जा बैठिया। चिड़ी भी पिछे पिछे उड के आ गई। आके कहा कां भाई मेरा मोती मैनू दे। कां कहिंदा दफा हो इत्थों, मैं तेरा मोती कद लिया। चिड़ी ने कां दियां बड़ियां मिन्नतां कीतियां, हथ बन्ने, पर कां ने कित्थे मनना सी, ना मोती देना सी ते ना ही दिता। दुखी होके चिड़ी ने पिप्पल नूं कहा पिप्पल ओ पिप्पल, जिहो जिहे माड़े कां नूं तू अपने उपर क्यों बैठन दिना आ, उड़ा दे इहनूं इस नूं। पिप्पल ने पत्तियां दी खड़खड़ विच जवाब दिता मैं क्यों उड़ावां कां नूं भला, मेरा की विगाड़िया है इसने। दुखी होके उड़दी उड़दी चिड़ी तरखाण कोल गई, जाके कहिंदी मिस्त्री जी मिस्त्री जी, पिप्पल मेरी गल नहीं मानदा, पिप्पल कट दे। तरखाण कहिंदा पिप्पल ने मेरा की विगाड़िया है जो मैं पिप्पल कट्टा, मैं कोई वेला बैठा। चिड़ी राजे दे महल पुजी ते राजे नूं कहा मिस्त्री मेरा काम नहीं करदा महाराज, उसनू सजा दिओ। राजे ने कहा कोई शिकायत नहीं आई मेरे कोल मिस्त्री दी, केवल तेरी गल सुन के सजा दे दियां, एक इंसाफ होया, दफा हो समा जाया ना कर। उड़दी उड़दी चिड़ी राणी दे महल विच गई। राणी नूं कहा महाराणी जी महाराणी जी, राजा मेरा आखा नहीं मानदा, तुसी राजे नाल रुस जाओ। राणी ने कहा क्यों रुसा, राजे ने मेरा की विगाड़िया है। उड़दी उड़दी चिड़ी चूहियां कोल गई। चूहियां नूं कहा चूहे भाइयो चूहे भाइयो, मेरा कहना मन के राणी दियां पोशाकां कुतर दिओ। उन्होंने कहा राणी ने साडा की नुकसान किया है, असीं उस दे लिबास क्यों कुतरीए। चिड़ी उड़दी उड़दी बिल्ली कोल गई। बिल्ली नूं कहा बिल्ली मासी थोड़ी खेचल कर ते चूहिया नूं खा जा। बिल्ली ने कहा मेरा की नुकसान किया चूहिया ने जो मैं खावा, चली जा इत्थों। उड़दी उड़दी चिड़ी कुत्तियां कोल गई। कहा कुत्ते भाइयो बिल्ली नूं वड्डो। कुत्ते कहिंदे असीं बिल्ली नूं क्यों वड्डीए, साडी कादी दुश्मनी। चिड़ी उड़दी उड़दी सोटियां कोल गई। कहिंदी सोटियो सोटियो तुसी कुत्ते नूं कुट्टो। सोटियां कहिंदियां असी कुत्तियां नूं क्यों कुट्टीए, साडी उन्हां नाल की दुश्मनी। फिर चिड़ी अग कोल गई, बेनती कीती अग्निदेव अग्निदेव, सोटियां मेरा क्या नहीं मानदियां, तुसी सोटियां नूं जला दिओ। अग ने कहा क्यों, सोटियां नाल मेरा की वैर, मैं क्यों जलावां। चिड़ी उड़दी उड़दी फिर तालाब कोल गई। कहा तालाब वीर मेरा आखा मन के अग बुझा दे एक बार। तालाब ने कहा अग नाल मेरा की वैर ते तेरे नाल मेरा की लागा तेगा, मैं क्यों अग बुझावा। फिर चिड़ी उड़दी उड़दी हाथियां कोल गई। कहा हाथियो हाथियो तालाब विच बड़ के तालाब दा पानी गंदला कर दिओ। तां हाथियां ने कहा क्यों असी क्यों गंद लाइए तालाब का पानी। उड़दी उड़दी चिड़ी बेचारी थक गई, आखिर कीड़ी कोल गई। कीड़ी नू अपनी सारी दर्द भरी कहानी सुनाई ते कहा, जे तू हाथी दे कन विच वड़ के दंदी वड़े तो हाथी मेरी गल मनेगा, नहीं तो मेरी किते सुनवाई ही नहीं। कीड़ी मन गई, कहंदी होर तेरे कद कम आऊंगी, दुखी दी बांह फड़नी तो मेरा धर्म है, फिर कद मौका मिलेगा। चिड़ी कहंदी फिर देर किस गल दी, जल्दी कर। तैयार होने वास्ते पानी विच डुबकी ला के इशनान किया, केस धोते, गुत कीती, मत्थे उपर बिंदी लई, सुरमा पाया ते सोला शिंगार करके छम छम करदी हाथी दे कन विच वड़ के दंदी वड़न वास्ते तुर पई। कीड़ी नू अपने वल आउंदी देख के हाथी थर थर कंबन लगा, मिन्नतां करन लगा, ना कीड़ी भैण, ना कीड़ी भैण, मेरे कन विच ना, दस मैं तेरी की सेवा कर सकदा हाँ। कीड़ी ने कहा, जदों तेनू चिड़ी ने पानी गंदला आने लई कहा सी, जवाब क्यों दिता? हाथी ने हथ बन ले, कहा गलती होगी, हुणे जाना गंदला कर दिना। हाथी सरोवर किनारे गया, सरोवर लगा मिन्नतां करन, हाथी भाई, हाथी भाई, मैनू गंदला ना कर, मैं हुणे अग बुझा दिना। अग बोली, लियाओ लाठियां, हुणे जला दिनी आ, मैनू कानू बुझाउंदे हो, मैं कहना मन तां रही आ। लाठियां कहण लगियां, दिखाओ कुत्ते किथे ने, हुणे चंब दिनी आ। कुत्ते भौंकण लगे, बिल्लियां साडियां कोई मासियां लगदियां ने, लियाओ हुणे वड़न नूं तैयार हाँ। बिल्लियां चूहे खाण लई तैयार हो गईआं, चूहियां ने राणी दे लिबास कट्टण लई हाँ कर दित्ती। राणी बोली, कपड़े कुतरवा के रुसना कोई रुसना होया, एक बार क्यों, हज़ार बार रुस जानी आ। राजे ने कहा, इस मिस्त्री दियां शिकायतां पहला भी आईयां होईयां हन, हुण तां सज़ा देनी ही देनी है। मिस्त्री ने कहा, मैनू तां आप लक्कड़ दी लोड़ है, दिखाओ किहड़ा हंकारिया होया पिप्पल है, किथे है। पिप्पल ने कहा, काणा कां मेरा की लगदा है, कदी नहीं बैठन दिंदा अगे तो। कां कां कां करके लगा चीका मारन, मैं आलना पा के किथे आराम करिया करांगा, बुलाओ चिड़ी नू, उसदा मोती मेरे कोल है, हुणे दे दिना। चिड़ी आ गई, गुस्से नाल कां नू कहा, दे मेरा मोती। हथ बन के कां ने मोती दे दिता, सवा लख दा मोती लै के चिड़ी आलने विच अपने बच्चियां कोल आ गई। बच्चे मोती देख के बड़े खुश होए, चिड़ी ने सवा लख रुपए लै के मोती राणी नू वेच दिता। इन्ने पैसों नाल पिप्पल उपर सोने दा महल बनवा के चिड़ी लगी खुशी खुशी अपने परिवार नाल उत्थे रहन। इस रौले गौले विच कां दा लाल पता नहीं किधर गुम हो गया, उसने ध्यान तां मोती वल करके रखिया सी। रोंदा रोंदा कां थां थां पुछदा फिरे, किसे ने मेरा लाल देखिया होवे, किसे ने मेरा लाल देखिया होवे किते। किसे ने गल नहीं सुनी, रोंदा रोंदा कां काणा मर ही गया। तो इस कहानी तो सानूं सीखण नूं मिलदा है कि कई बार असी लालच विच आ के दूजियां दी चीज़ दे उपर निगाह रख लैंदे आ, ते जदों वक्त बदलदा है तां असी अपनी चीज़ तां अपने हथों पहला ही गवा लैंदे हाँ, जिहड़ी चीज़ दा असी लालच कीता हुंदा उह वी साडे हथों निकल जांदी है, ते साडे पल्ले कुल मिला के कुछ वी नहीं पैंदा सिर्फ निराशा तों बिना। सुणदे आ इक गीत, फिर वापस आवांगे स्टूडियो दे विच।
1: आओ तोरला भी छड्या ते चादरा भी लग्या, लगदा बाबा आउंदा। आओ स्पीकरां दी आवाज थोड़ी जी घट कर लो वीरे, पतंदर आप ही बहुत उच्ची होंदा।